100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ ये है म्यूजिकल दिल लगी। लेकिन अब म्यूजिकल दिल लगी का वक्त बस सिमट गया है, तो नीतू इजाजत चाहती है आपसे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप अभी समाचार सुनेंगे और समाचार सुनने के बाद आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपकी फरमाइशें पूरी की जाएंगी। तो भूलिएगा मत, उसका ईमेल आईडी fmgoldairdelhi@gmail.com, यहां पर आपको अपना मैसेज भेजना है, अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है। फिलहाल एक गाना आपके लिए छोड़े जा रही हूं, उसके बाद समाचार और फिर दिल का मेल बॉक्स।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं।

0: जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौ वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वादा शामिल है। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदार दराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France.

0: में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप एल में ब्रिटेन ने अपने आरंभिक मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लीड्स में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। AI को सुरक्षित, तेजी से और कुशलता से लागू करने पर सत्र में श्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानव मस्तिष्क के हर पहलुओं को बदलने की क्षमता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस प्रौद्योगिकी को जीवन मूल्यों, जिम्मेदार डिजाइन और सरदार शासन के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। वहीं लिथियम, निकेल और दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई है। नेताओं ने AI और क्वांटम तकनीक से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के लिए भी वैश्विक तैयारी बढ़ाने का आह्वान किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक रूप जारी कर दिया है।
5: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत

0: पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
2: We have a huge pool of talent.
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और अब समाचार खेल जगत के।
3: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। लीड्स में ग्रुप ए के मैच में भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्र दराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हरा दिया। विश्व दर्पण के लिए मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि संघर्ष, जलवायु संकट और धन की कमी के कारण आने वाले महीनों में दुनिया के 13 क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार करीब 26 करोड़ 60 लाख लोग पहले ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। सूडान, दक्षिण सूडान, यमन और फलिस्तीन सबसे अधिक चिंता वाले क्षेत्रों में शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खाद्य सहायता के लिए वित्तीय सहयोग में कमी आई है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवरटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप एल में ब्रिटेन ने अपने आरंभिक मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हराया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लीड्स में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपका मेल बॉक्स शुरू हो गया है आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े गाने की तरफ, आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूं कि ये है रिक्वेस्ट बेस्ड शो और इसमें आप अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com। तो बस जल्दी से अपना फोन उठाइए, वैसे फोन तो हाथ में ही होता है, तो आप अपने फोन में ईमेल खोलिए और ये अपनी पसंद का गाना लिखकर हम तक पहुंचा दीजिए। पहला गाना एक बड़ा ही नॉटी सा गाना है जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। दिग्दर्शन गौड़, कविता राधा नामदेव, रानी शर्मा, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कर, दर्शन भाई की पसंद का। फिल्म है हाफ टिकट और किशोर कुमार अपने नॉटीएस्ट वर्जन में है इस गाने में।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टकर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूँ न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

पहले तो बांधी निगाहों की डोर,

0: गुजरिया ओ गुजरिया ओ
1: ये गाना अगर आपने देखा होगा ना स्क्रीन पे तो आपको मजा आया होगा सुनने में भी, क्योंकि इसमें प्राण हैं और किशोर कुमार हैं, जो कि लड़की की आवाज में भी किशोर

मरने गाया है और प्राण को इतना तंग कर रहे हैं वो गाने में कि बस पूछिए मत। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला गाना जो सुनना चाहा है बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या ने सुनना चाहा है गीत फिल्म से।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान

0: लगता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ताजमहल फिल्म से था ये कलाम और इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई थी अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदा फारजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद और आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद और सभी फूल वाले फैमिली ने। ताजमहल फिल्म का कोई गीत सुनना चाहा था तो उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आज याद किया जाएगा अब दान सिंह जी को। दान सिंह जी के बारे में शायद आप जानते ना हो, उनका एक गाना अगर आप सुन लेंगे ना तो आप पहचान जाएंगे। वो संगीतकार जिनका ये गाना आज तक फेमस है और इस गाने को सुनना चाहा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और बाकी सभी परिवार के सदस्यों ने। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, गाना सुन लेते हैं। मुकेश जी की आवाज में है ये गाना, माई लव फिल्म से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

आंख मिचोली तो इन साहब ने खेली है, जिनको जिनकी पसंद पर ये गाना आपको सुनाया गया है, अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गाने की फरमाइश भेजते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप उसे लिख दीजिए, आप ज्यादा कारीगरी मत कीजिए। ब्लैक सरफेस पे आपने जो भी लिखा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो बाई चांस मैंने उसको सेलेक्ट किया तो मुझे नजर आया कि उसमें गाना है, और इतना टाइम होता नहीं है रेडियो पर ना जब आप लाइव शो करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि सिंपल शब्दों में अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दीजिए। अब इस प्रोग्राम का आखिरी गाना जो है वो आप तक पहुंच रहा है, सुनील सुषमा राजवीर अनन्या गायकवाड़ की पसंद पर। आप इस गाने का आनंद उठाइए और नीतू को इजाजत दीजिए, मैं तस्वीर में मिलती हूँ आपसे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक तक सुरक्षित पहुंच से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। इन घोषणाओं का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच एक

एक की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर है पंचमणि, जो कि है हमारी आज की मंजिल, जो प्रकृति की गोद में बसी एक ऐसी जगह है जो मेट्रो सिटीज की हलचल से दूर आपको एक सुकून की दुनिया मिली जाती है और छुट्टियां मनाने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू के साथ ये है तस्वीर, जिसमें आज हम बात करेंगे सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर पंचमणि की।

मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा हिल स्टेशन है पंचमणि, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यूं तो ये एक प्राकृतिक स्थल है, मगर यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। मॉनसून में तो ये जगह एकदम जादुई एहसास दिलाती है, जब नीचे घना जंगल और आसमान पर बादलों का वास होता है। ऐसे में जब कभी सूरज बादलों की ओर से झांकता है ना, तो कमाल का नजारा होता है। वैसे यहाँ का धूपगढ़ सूर्यास्त के लिए ही मशहूर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे।

0: मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप और हम बातें कर रहे हैं पंचमणि की। पंचमणि का बाइसन लॉज एंड म्यूजियम जो है वो कैप्टन फोर्सिथ से जुड़ा हुआ है, जिन्हें पंचमणि खोजने का श्रेय दिया जाता है। ये लॉज उनका निवास स्थान हुआ करता था, जिसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहां पर आप सतपुड़ा पहाड़ियों के वनस्पति और जीवों के चित्र, मॉडल मानचित्र यानी कि मैप वगैरह सब देख सकते हैं और उनके बारे में ढेर सारी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक ओपन थिएटर भी है जिनमें वन्य जीवों पर फिल्में, वृत्तचित्र और प्रस्तुतियां जो हैं वो दिखाई जाती हैं। पंचमणि के इंटरप्रिटेशन सेंटर में आप पंचमणि और उसके आसपास की खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं और खोरकू जनजातियों की जीवन शैली की एक झलक भी पा सकते हैं, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बसे गांव में रहते हैं।

पंचमणि नाम जो है वो दो शब्दों से बना है, पंच और मणि, यानी पांच गुफाएं जो पांडव गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। किंवदंती कहती है कि इन गुफाओं का निर्माण महाभारत काल के पांच पांडव भाइयों ने अपने 13 साल के वनवास के दौरान किया था।

पंचमढ़ी के आसपास की कई दूसरी गुफाओं में भी कई प्राचीन कहानियां शैल चित्रों के रूप में उकेरी गई हैं, जिनमें से कुछ तो 10,000 साल पुरानी हैं। पंचमढ़ी में आप पत्थर से बनी जटा जो है शंकर गुफा भी देख सकते हैं। यहाँ ये गुफाएं जहां पर हैं वहां पर वो चट्टान दिखने में भगवान शंकर की उलझी हुई जटाओं जैसी दिखती है, इसलिए इसे जटा शंकर गुफा कहते हैं। लोक कथा के अनुसार भगवान शंकर राक्षस भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए इसी गुफा में छिपे थे। इस गुफा के अंत में एक अनोखी चट्टान भी है जो नाग के तने हुए फन की तरह दिखती है, और इसीलिए लोग जो हैं यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो इसे शेषनाग कहते हैं इस चट्टान को। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये है तस्वीर जिसमें बातें हो रही हैं पंचमणि की।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने

0: को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मम्मी ये जहाज कहाँ जा रहा है?
3: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
4: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
4: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, और आज हम बातें कर रहे हैं पंचमणि की। पंचमणि पर प्रकृति की भरपूर कृपा है, और इस प्राकृतिक स्थल की, हर प्राकृतिक स्थल की तरह यहाँ भी कुदरत ने अपनी खूबसूरती का खजाना लुटाया हुआ है। खासकर झरनों की बात करें ना, तो ऐसी भरमार है यहाँ पर, बहुत सारे झरने हैं। बी फॉल्स, अप्सरा विहार फॉल्स, सिल्वर फॉल्स, ये सब आपकी यात्रा को ना यादगार बना देंगे। बी फॉल्स को जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे शानदार झरना है और पंचमणि बस स्टैंड से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। दूर से चट्टानों पर बहता इसका पानी मधुमक्खी की तरह बिन बनाने की आवाज करता है, इसीलिए इसे बी फॉल्स कहा जाता है। सिल्वर फॉल्स में पानी 150 फीट की ऊंचाई से गिरता है, और अप्सरा विहार फॉल्स 10 मिनट की डाउनहिल ट्रेल है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश महिलाएं यहां स्नान करती थीं। उनके गोरे रंग के कारण स्थानीय लोग उन्हें अप्सरा मानते थे, और इसीलिए इस कुंड का नाम अप्सरा विहार हो गया।

आपको वन्य जीवों को देखना और उनके जीवन को करीब से देखना पसंद है तो आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। जानवरों, सरीसृपों और पक्षियों की अनेक प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, जिनमें से कई तो लुप्त प्राय हैं। आप पंचमणी में थोड़ा सा रोमांच अगर ढूंढ रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं पैरा मोटरिंग, एटीवी बाइक राइड, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप साइकिलिंग, किनोइंग और ट्रैकिंग जैसी प्रदूषण मुक्त गतिविधियां कर सकते हैं, ताकि पंचमणी जितना साफ सुथरा है, जितना खूबसूरत है, वैसा ही खूबसूरत हर किसी को लगे।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ, और हम तस्वीर में बातें कर रहे हैं पंचमणि की। औपनिवेशिक काल का क्राइस्ट चर्च जो यहाँ पर है वो वास्तुकला के लिहाज से अतुलनीय है, और इसे देखते ही ना आपको वो पुराना समय याद आ जाएगा। बड़े पेड़ों से घिरा ये चर्च एक अद्भुत एहसास कराता है। पंचमणि की तीसरी सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़ पहाड़ी है। सदियों पुराना शिव, भगवान शिव का मंदिर जो है वो यहाँ पर है, जिसे चौरागढ़ मंदिर कहते हैं या फिर छोटा महादेव का मंदिर कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, ये ध्यान में रखिएगा, 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। चौरागढ़ तक जाने वाले रास्ते में पड़ेगा बड़ा महादेव मंदिर, जो कि 60 फीट लंबी गुफा में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बड़ा महादेव गुफा मंदिर जो है वो स्थान है, वो गुफा जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर कर राक्षस भस्मासुर का वध किया था। इसी के पास है गुप्त महादेव गुफा, जो भगवान शिव को समर्पित 40 फीट लंबी गुफा है। इसके प्रवेश द्वार पर भी आप जब जाएंगे तो आपको कई और मूर्तियां वहां दिखेंगी, और अंदर जाने का जो रास्ता है ना वो बहुत ही सकरा और घुमावदार है। तो आप जब पंचमणि जाएं तो इन सभी जगहों पर जाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही वहां का जो एक खासियत है, वहां जाएंगे तो बहुत सारी चीजों से आप रूबरू होंगे, प्रकृति के साथ साथ ये सब भी देखिएगा, और बस वहां जाके एंजॉय कीजिएगा, यादें बना के लौटिएगा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये है तस्वीर।

आप भी एक गाना गाएंगे जब आप पंचमढ़ी पहुंच जाएंगे और वहां का जो पूरा मौसम है वो देखेंगे। तो पंचमढ़ी घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से अप्रैल के बीच। जाने के लिए जबलपुर और भोपाल नजदीकी हवाई अड्डे हैं और निकटतम रेलवे स्टेशन है पिपरिया। दोनों ही जगह से आपको पंचमढ़ी तक जाने के लिए मिल जाएगी सड़क, जो भी टैक्सी हैं वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको सड़क मार्ग का इस्तेमाल वहां से आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप किसी भी बड़े शहर से जाएंगे तो आपको टैक्सी से या बस से आप वहां पहुंच सकते हैं। इस यात्रा में बस अपने साथ कुछ चीजें जरूर रख लीजिएगा, जैसे कि धूप से बचने के लिए टोपी, धूप का चश्मा, पानी की बॉटल और एक कैमरा। चाहे तो एक हल्का रेनकोट या छाता ले जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम ना काफी अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे दिल्ली का होता जा रहा है वैसे ही। यात्रा करते समय छोटी मोटी दवाइयां तो आप रखते ही होंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं।

इसी के साथ वक्त हो गया है कि तस्वीर को यहीं समेट लिया जाए। तो नीतू चलती है, आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं इसी चैनल पर, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल पर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। नीतू को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर

से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम, और घर आंगन कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त अमित कमल आपका स्वागत करती हूं। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। और दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव से बड़ा शिक्षक इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप भी अपने अनुभव से सीखिए और तरक्की कीजिए। और ये जो कार्यक्रम है घर आंगन कार्यक्रम, जिसमें हम आपके घर की और आपके हित की बात करते हैं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म चरित्रहीन से। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और घर आंगन कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए योग से जुड़ी हुई बातें लेकर आ रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करीब ही है। और दोस्तों, ऑफिस में काम कर करके हम थक जाते हैं पर समझ में नहीं आता कि हम समय कैसे निकालें, उसी पर आज हम बात करेंगे कि आप ऑफिस में योगा कैसे कर सकते हैं। ऑफिस में योगा करना ऊर्जा बढ़ाने, कमर दर्द या कंधे के दर्द से राहत पाने का एक फायदेमंद तरीका हो सकता है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो आप वहीं बैठकर कई तरह के योगासन कर सकते हैं। आज हम आपके साथ कुछ योगासन साझा कर रहे हैं जो आपके ऑफिस में काम करने वालों के लिए एकदम सही है ताकि वो आप अपने ब्रेक टाइम का भरपूर फायदा उठा सकें। सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने ऑफिस के कपड़े पहने हैं उन्हीं में आप ये आसन कर सकते हैं। और ऑफिस में किए जाने वाले इन योगासन में से किसी को भी करने से पहले दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप इसके लिए कर सकते हैं बैठे बैठे ट्विस्ट। जी हाँ, डेस्क पर बैठकर योगाभ्यास करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों, एक साधारण बैठे हुए ट्विस्ट से शुरुआत करें। जब से सबसे पहले आपको कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठना है, सांस लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और सांस लेते हुए दाईं ओर मुड़े। सहारा लेने के लिए दोनों हाथों को दाईं ओर की ओर आर्म रेस्ट पर रखें। अगर कुर्सी में आर्म रेस्ट नहीं है तो आप दाहिना हाथ सीट पर अपने कूल्हे के पीछे रखें और बायां हाथ अपनी दाहिनी जांघ पर रखें। हर सांस के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें जिससे आपका शरीर आसन में और गहराई तक खिंच सके। प्रत्येक तरफ 60 सेकंड तक आसन को रोकें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। और एक और आसन है दोस्तों, कंधे को ऊपर नीचे करना। सांस लेते समय अपने कंधों को कानों की ओर ऊपर उठाएं और फिर नीचे लेकर जाएं। सांस छोड़ते समय उन्हें नीचे और आगे की ओर ले जाएं। इस क्रिया को इसी दिशा में दो बार दोहराएं और फिर विपरीत दिशा में करें। बैठकर पीठ झुकाने वाला आसन भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए टीम के साथ आपको कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग सेशन के बाद थोड़ी बदहजमी महसूस होती है तो फैन पोज पेट को हल्का सा स्ट्रेच देता है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अपनी कुर्सी के अगले किनारे पर बैठें और अपने पैरों को फर्श पर रख लें। अपनी पीठ कुर्सी से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए और आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं। आगे की ओर झुकें और अपनी बाहों को पीछे की ओर ले जाकर कुर्सी को पकड़ लें। अपनी कोहनियों को यथासंभव सीधा करने का प्रयास करें। तो है ना ये आसान से आसन जिन्हें आप ऑफिस में कर सकते हैं।

0: हेमलता की आवाज में ये गीत आपने सुना, आप तो ऐसे ना थे। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत।

की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 है, लेकिन आजाद भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आजादी के बाद भी कई बरस तक विदेशियों का शासन रहा और इसे आजाद होने में 14 बरस और लगे। ये हिस्सा था देश का तटीय इलाका गोवा, जो उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। दरअसल सन 1946 में जब ये साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत में अधिक समय तक अपना राज शासन नहीं चला पाएंगे, तब राष्ट्रीय नेता ये मानकर चल रहे थे कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले राम मनोहर लोहिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह है कि लोहिया ने 18 जून सन 1946 को गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों गोवा वासियों ने शामिल हुए और आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हालांकि कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को सन 1961 में आजादी मिली। 18 जून को गोवा की आजादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज है गोवा क्रांति दिवस।

सन 1971 में आई फिल्म पराया धन से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे डेज ऑफ द डे की और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में अक्सर लोग पिकनिक पर जाना पसंद करते हैं और प्रकृति के बीचों बीच बैठकर उस समय का आनंद उठाते हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ बहुत सारे आउटडोर गेम्स भी लेकर जाते हैं। करीब एक सप्ताह पहले ही सभी जोरों शोरों से इसकी तैयारी करते हैं, पर आपको पता है इसके लिए भी एक खास दिन है जो है आज यानी 18 जून को। जी हाँ दोस्तों, 18 जून को हर साल विश्व पिकनिक दिवस मनाया जाता है और पिकनिक का नाम सुनते ही बच्चों और बड़ों के चेहरे पर बहुत सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन एक सवाल जरूर सबके मन में आता है, वो ये कि पिकनिक शब्द आया कहाँ से। दोस्तों, कहा जाता है कि पिकनिक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के बीच में बैठकर भोजन या नाश्ता करना। ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद ही ये ट्रेंड काफी पॉपुलर हुआ और पूरी दुनिया में इसे अपना लिया गया। आधुनिक पिकनिक का श्रेय फ्रांसीसियों को दिया जाता है, लेकिन वैश्वीकरण और व्यक्तिगत संस्कृतियों का भी इस पर व्यापक असर हुआ और लोकप्रियता भी हुई। जैसे जैसे पिकनिक की अवधारणा फैली, विभिन्न स्थानों पर अनेकों परंपराएं विकसित हुई। विश्व भर में शायद ही कोई ऐसी संस्कृति हो जो अपने तरीके से पिकनिक ना मनाती हो। और पिकनिक की इतनी अच्छी सी जानकारी के साथ आपके लिए है एक प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज है आशा जी, दिलराज कौर व साथियों की। फिल्म का नाम है सत्य पे सत्ता।

हमेशा अपने दर्शकों को कुछ नया देने वाले मनमोहन देसाई ने 1981 में फिल्म नसीब का निर्माण किया। इस फिल्म के गाने जॉन जानी जनार्दन में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के नामी सितारों की पूरी फौज ही खड़ी कर दी थी। इंडस्ट्री के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब एक गाने में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों की उपस्थिति रही। कह सकते हैं मनमोहन देसाई अपनी तरह के एक अलग ही निर्देशक रहे, जिन्होंने फिल्म में मनोरंजन की एक खास अहमियत दिखाई। उसी को ध्यान में रखते हुए वो फिल्म बनाते चले गए। 1983 में मनमोहन देसाई निर्मित एक और फिल्म प्रदर्शित हुई कुली, जो हिंदी फिल्म जगत में अपना नाम दर्ज करा गई। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमिताभ साहब के ठीक होने के बाद मनमोहन देसाई ने उन्हें लेकर कई फिल्म का निर्माण किया।

1985 में अमिताभ अभिनीत फिल्म मर्द, 1988 में गंगा जमुना सरस्वती और इसके बाद फिल्म तूफान। मर्द फिल्म के बाद उनकी बाकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई, इसी के चलते उनके निर्देशन से कुछ दूरी सी बन गई।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनमोहन देसाई ने अपने करियर के शुरुआत में राजकुमार और किस्मत फिल्मों का इन फिल्मों की कहानी भी लिखी थी। इसके अलावा 1963 में प्रदर्शित ब्लफ मास्टर का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था। अपने तीन दशक से भी ज्यादा लंबे सिने करियर में मनमोहन देसाई ने लगभग

टाशी दिलिक मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 18 तारीख व दिन है गुरुवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगीत सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमांतो स्वर्गरी और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास, मनपा उद्घोषक श्री थुतन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन थामो। आकाशवाणी तवंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की दो दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह

0: ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए सुरेश वाटकर से चंद हिंदी भक्ति गीत।

कार्यक्रम वंदना के तहत श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरेश वाडकर से चंद हिंदी भक्ति गीत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम वंदना श्रोताओं जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं RBI द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो चलिए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत को। इस कार्यक्रम के तहत आज हम लेकर आए हैं चंद आधुनिक कोकबरोक गीत, अरुण जमातिया, जासवा हालम, प्रियंका और कोरस के आवाजों में।

श्रोताओं, विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं। चंद आधुनिक कोकबोक गीतों का अरुण जमातिया, जासवा हालम, प्रियंका और साथियों के आवाजों में, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है इन्हीं कलाकारों के

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया अरुण जमातिया, जासुआ हालम, प्रियंका और साथियों की आवाजों में चंद आधुनिक कोकपरोक गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए पेश है महिलाओं पर केंद्रित साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। कार्यक्रम महिला मंच के तहत आज सुनिए वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सुनम जंगमू से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न विषयों पर हुए एक साक्षात्कार। साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तवांग की हिंदी उद्घोषिका दोजी ड्रामा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारे साप्ताहिक महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सुनम सांगमू जी। तो सुनम जी, आपका सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ।
2: आपको भी नमस्कार
1: जी। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ आज के विशेष मेहमान है एडवोकेट सुनम सांगमू, तो जाहिर सी बात है कि आज हम अधिनियमों पर ही चर्चा करेंगे और कार्यक्रम का नाम ही कार्यक्रम महिला मंच है, तो इसमें हम महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए कई सारे अधिनियमों पर बात करेंगे। तो सनम जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या घरेलू हिंसा, आप हमें बताइए कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और घरेलू हिंसा कितने तरह के होते हैं।

0: प्रक्रिया, घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस हम उसे कहते हैं जो हिंसा घर के चार दीवारों के अंदर होता है ना, एक छत के नीचे में जितने भी आदमी रहते हैं, जैसे कि एक महिला एक दूसरे घर में शादी करके जाते हैं तो उसका पति का परिवार हो गया, या फिर वो अपने घर में जो अपने माँ बाप भाई बहन या फिर ज्वाइंट फैमिली है तो अंकल आंटी जिसके साथ भी रहते हैं, तो मतलब एक घर के अंदर में जो हिंसा होता है उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं या घरेलू हिंसा कहते हैं। और घरेलू हिंसा के हमारे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में 5 टाइप्स दिया गया है, 5 टाइप्स। तो पहला है फिजिकल एब्यूज, दूसरा है इमोशनल एब्यूज, तीसरा है सोशल एब्यूज, चौथा है सेक्सुअल एब्यूज और लास्ट इकोनॉमिक एब्यूज। तो मैं इसको थोड़ा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी। फिजिकल एब्यूज हम किसे कहते हैं, जैसे नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि मतलब फिजिकल मतलब आपको मारना पीटना उसको हम फिजिकल एब्यूज कहते हैं, और वो दिखाई भी देता है अगर किसी के साथ फिजिकल एब्यूज हुआ है तो। मगर जब हम इमोशनल एब्यूज की बात करते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर विक्टिम को खाया जाता है ना, तो वो दूसरे टाइप होता है। फिर आता है आपका सोशल एब्यूज, मतलब मेनलैंड इंडिया में कई कई जगह पर जो बहुत ही अंदर रिमोट एरिया है वहां पर अभी तक भी ऐसे औरतें हैं जिसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो सोशल एब्यूज के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल एब्यूज ना, तो हमारे इंडिया में मैरिटल रेप को अभी तक क्राइम नहीं माना जाता है, तो अगर कोई हस्बैंड कोई किसी वाइफ को मैरिटल रेप करता है तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में उसको सेक्सुअल एब्यूज के अंदर में बुक कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका इकोनॉमिक एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज मतलब जिसे मैंने आपको कहा मेनली इंडिया में कई सारी जगह है जहाँ पर अभी तक औरतों को अपना बैंक अकाउंट भी खोलने नहीं दिया गया है, तो इस तरह का मतलब सिचुएशंस है और उनको खर्चा पानी नहीं दिया जाता है, तो ये सब इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर में आता है।
1: तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं आते हैं बल्कि और भी बहुत सारे हिंसाएं आते हैं, जैसे यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा या आर्थिक हिंसा या कई तरह के और भी हिंसाएं हो सकते हैं। तो अगर किसी के साथ अगर ऐसी घटना या ऐसी हिंसा होते हैं कहाँ जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए?
0: जी हमारे अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी के साथ भी इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो अपने अपने जो पास के पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1 स्टॉप सेंटर तवांग है वहाँ जाके वो डायरेक्टली आके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और जब वो कंप्लेन करते हैं तो हम जब वो 1 स्टॉप सेंटर में आते हैं तो फर्स्ट हम उनका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके बाद में हम उनको जीएमएफसी कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां जाके डीएलएसए की मदद से उनको आगे की कार्रवाइयां किया जाता है।
1: क्योंकि हमारे समाज में लगभग शारीरिक रूप से जो हिंसा हुआ है उसी को ही सच माना जाता है, लेकिन अब सरकार ने हमें सुविधाएं दे रखी हैं कि किसी भी तरह के हिंसा आपके साथ अगर होते हैं तो आप आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी ही घटना घटती है, अगर वो आकर आपके पास शिकायत दर्ज भी करते हैं तो सरकार की ओर से और उस पीड़ित महिला को क्या क्या रिलीफ मिलते हैं?
0: जी जैसे मैंने आपको बताया जब हम अपने DIR को फॉरवर्ड करते हैं जीएमएफसी कोर्ट में तो वहाँ पर जो भी जो लीगल एड क्लिनिक में एडवोकेट है वो उनको मदद करते हैं। तो उसके बाद में अकॉर्डिंगली मतलब उनका जो कितना सीवियर उनके साथ में वायलेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग में उनको रिलीफ दिया जाता है। तो फर्स्ट आपको रिलीफ में आता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसमें जो औरतें होते हैं विक्टिम होते हैं उनके जो एक्यूज होते हैं या रेस्पोंडेंट होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है। तो वहां पर उनको वो फिजिकल वायलेंस या किसी भी तरह का जो फिजिकल वायलेंस या इकोनॉमिक वायलेंस जो भी उसको रोक दिया जाता है। फिर सेकेंड आता है आपका रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में क्या होता है आपका एक महिला को जब वो घर से निकाल दिया जाता है उसका हस्बैंड या किसी भी
1: कोई भी सदस्य
0: घर के सदस्य के द्वारा तो वो रेसिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकता है। फिर आता है आपका मॉनिटरी रिलीफ, वहाँ पर अगर उनके साथ में मतलब मंथली मेंटेनेंस नहीं देता है या फिर इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वो प्रे कर सकती है। फिर कस्टडी ऑर्डर तो मेनली बच्चों के लिए होता है, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ या कोई भी सदस्य किसी भी महिला के बच्चों को लेने के लिए करता है तो वो कस्टडी ऑर्डर के लिए मांग कर सकता है। और लास्ट है आपका कंपनसेशन ऑर्डर, तो इस एक्ट के अंदर में पीड़ित महिलाओं को कंपनसेशन भी दिया जाता है जो कि होता है फिजिकल वायलेंस या इमोशनल वायलेंस के लिए दिया जाता है।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट या हम जिसे पोश एक्ट 2013 भी कहते हैं, तो इसके बारे में मैं और हमारे श्रोता

0: जानना चाहेंगे कि पोश एक्ट किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या जो ऑफिसेस में काम करते हैं वही महिलाएं आते हैं, या फिर घर में जो काम करते हैं, या घर में काम ही नहीं बल्कि किसी के घर में रहते भी है कोई, जब कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आते हैं तो उनके घर गांव में होते हैं, तो किसी रिश्तेदार के घर पर अगर वो रहती हैं तो उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा जो हैरेसमेंट होते हैं तो क्या उन पर भी ये लागू होते हैं?
1: जी शुक्रिया। फर्स्ट मैं पोश एक्ट का फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगी, POSH, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पर भले ही वर्क प्लेस सिर्फ लिखा है, ये एक्ट जो है जैसे आपने मुझे पूछा डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है कि नहीं, बिल्कुल ये एक्ट जो है डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ये लागू होता है।
0: जैसे कि किसी के साथ ऐसी हिंसा या कोई हैरेसमेंट होते हैं तो अगर वो किसी को शिकायत दर्ज करना चाहे भी तो थोड़ी सी खुलकर नहीं बोल सकते हैं, तो अगर शिकायत दर्ज करना चाहे तो किस तरह से करेंगे?
1: तो इस एक्ट के अंदर में ये भी कहा गया है कि किसी भी ऑफिसेस ना, किसी ऑफिसेस या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर मैंडेटरी है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाना है। तो उस कमिटी में आपका चार मेंबर होना है और उस चार में से मैक्सिमम नंबर जो है, मतलब 50% से ज्यादा मेंबर जो होना है वीमेन होना है, जो वीमेन रिलेटेड वर्क करता है, जो एनजीओस में है उनको वहां पर अपॉइंट करना है। और जो जो इंटरनल कमिटी में है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में है, उनका नाम अपने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में उनको डिस्प्ले करना है, ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको ये नॉलेज हो कि अगर उनके साथ में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो वो किसके पास जाके कंप्लेन करना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिस में होता है तो उनका जो कंप्लेंट है फर्स्ट आपको IC मतलब इंटरनल कमिटी में जाके लॉन्च करना पड़ता है। फर्स्ट ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटी हुआ करता था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इन 2016 इसको सिर्फ इंटरनल कमिटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये कमिटी जो है सिर्फ कंप्लेंट तक ही सीमित नहीं है, इनका पावर इससे ज्यादा है, इसलिए अभी इनको हम इंटरनल कमिटी के नाम से जानते हैं। और अगर 10 से कम वाले जो ऑफिस है वो अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज में आपका लोकल कमिटी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अप्रोच करके वो अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।
0: जी सुनम जी, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत ही कम ना के बराबर होते हैं, फिर भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना हमारे कर्तव्य है। और हर ऑफिस में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ पर एक इंटरनल कमिटी होना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसी हिंसा होते हैं, हैरेसमेंट होते हैं, तो वो सीधे जाकर अपनी शिकायत कर सके। और मैंने ये भी सुना कि शी बुक्स पोर्टल नामक एक वेबसाइट है, तो इस बारे में आप हमें बताएं।
1: आजकल ऐसा होता है कि लोग कंप्लेंट करने से, बाहर आने से उनको शाई फील होता है, घबराहट फील होता है, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है ना, एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वहाँ में जो पीड़ित महिलाएं हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रहे अपने ऑफिस में, वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। shebox.wcd.gov.in, यहाँ पर जाके वो डायरेक्टली अपना कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर से जो भी उनका कंसर्न ICC है या LC है, लोकल कमेटी है या इंटरनल कमेटी है, वो अपने कंप्लेंट को टिकअप कर लेंगे।
0: जी मतलब अगर किसी के साथ ऐसी हैरेसमेंट होते हैं तो वो बिना किसी दूसरों को बताए ही अपने लैपटॉप से या अपने ही कंप्यूटर से वो इस पोर्टल को टाइप करते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं ना। और सुनम जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसे कहते हैं और यह अधिनियम कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए लागू होते हैं?
1: जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो है बच्चों के लिए, ये एक एक्ट है जो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। आपने निर्भया केस तो जरूर सुना होगा, जो घटना हुआ था निर्भया केस, तो उसमें आपको जानकारी होगा कि वहाँ पे एक एक्यूज जो है वो जुवेनाइल था, जिसके होते उस सीवियर पनिशमेंट इतना नहीं मिला था, जिसके वजह से भी इस एक्ट को थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा। तो उस केस के बाद से अब जो बच्चे हैं, जो 16 to 18 ईयर्स के बच्चे हैं, अगर वो हीनेस क्राइम करता है, हीनेस क्राइम मतलब जो 7 ईयर्स से ज्यादा पनिशमेंट होता है जिसमें, अगर वो ऐसा क्राइम करता है तो उनको भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे आपने हमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पूछा है, तो नॉर्मली ये बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए है,

0: तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में दो तरह का बच्चा आता है, एक है आपका सीएनसीपी और दूसरा है सीसीएल। सीएनसीपी मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एंड सीसीएल मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ।
1: तो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ या फिर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है, और अगर किसी बच्चे से अपराध हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेंगे?
0: सीएनसीपी जैसे कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, और सीसीएल मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो 18 से नीचे बच्चे हैं वो अगर कोई क्राइम करता है तो उनको कहाँ पर हम नॉर्मल कोर्ट में तो उनको हम लेकर नहीं जाएंगे, तो उनको हम लोग डील करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो इस एक्ट के अंदर में ही दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है, नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है। तो उसमें 3 मेंबर होता है, एक होता है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो हमेशा अब वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जेएमएफसी मैम होता है यहाँ का या सर होता है वही प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है। फिर जो 2 बाकी मेंबर है वो किसी भी एनजीओ का मेंबर हो सकता है, एडवोकेट्स हो सकता है या फिर सोशल वर्कर हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर में देखा जाता है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो बच्चे होते हैं उनको जो है केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होते हैं, जो डेस्टिट्यूट होते हैं, जिसका माँ बाप ने उसको अबेंडन कर दिया होते हुए भी, ऐसे तरह के बच्चे ना, तो उनको इसी एक्ट के अंदर में CWC ना, जैसे GGB दिया है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करके होता है, जहाँ पर 1 चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं, वो लोग उनको देखभाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका माँ बाप होते हुए भी उसको नहीं देख रहा है, नहीं देख पा रहा है, या फिर कोई बच्चा का कुछ आता पता नहीं है ना, और जो कोई बहुत ही पुअर फैमिली से या फिर ऐसे बिलोंग करता है, तो उनको CWC टेक केयर करते हैं।
1: जी, और जब हम बच्चों से संबंधित चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं साथ में ये भी जानूंगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए आप।
0: जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें क्या होता है, आपका जो 6 to 14 ईयर्स का बच्चा होता है उसको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने का बात करता है ये एक्ट। किसी भी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको हम एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, और किसी भी स्कूल गवर्नमेंट रन स्कूल है वहाँ पर बच्चों को हम फीस नहीं ले सकते, किसी भी तरह का चार्ज नहीं ले सकता है, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना है। और जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उनके लिए भी ये होता है इस एक्ट के अंदर में कि उनका जो 25% होता है, 24% जो होता है वो
1: छूट मिलेंगे।
0: जी, मतलब बैकवर्ड क्लासेस जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब रिजर्व होना चाहिए। तो मेनली ये एक्ट यही कहता है कि जो 6 to 14 ईयर से उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ही है, भले ही अगर वो अपने एज से ज्यादा, किसी किसी का ऐसा होता है कि वो एज चला जाता है फिर वो उस क्लास में फिट नहीं होता है, तो वो कंसर्न स्कूल का ड्यूटी होता है कि उसको वो स्कूल में भर्ती कराना है, चाइल्ड स्पेशल नीड की तरह उनको ट्रीट करके उनको पढ़ाना है, उनके दूसरे जो बच्चे होते हैं उसके साथ में बराबर उनको लाना उनका ड्यूटी होता है।
1: जैसे कि अभी बाल मजदूर हमारे यहाँ पर तो बहुत ही कम होते हैं, आजकल हर कोई समझदार हो चुके हैं कि सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर से लाकर भी किसी के होटलों में या घरों में काम कराते हैं, हालांकि उनके माँ पिताजी के रजामंदी के साथ ही कराते हैं, फिर भी ऐसे बच्चे अगर 6 से 14 साल के बीच के निकले तो उन पर क्या ये कानून लागू है या नहीं?
0: जी, ये जो है 6 to 14 ईयर्स जो है वो सभी बच्चों के लिए, इंडिया के सभी बच्चों के लिए उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। और अगर कोई व्यक्ति 6 या 14 वर्ष के बच्चों को काम पर रखता है तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर उसको बुक किया जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर कोई काम लगाता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर में आता है, और चाइल्ड लेबर भी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो हम बच्चों को अपने घर में भी काम नहीं लगा सकते हैं, किसी के बच्चे को अगर हम पढ़ाने लेके आते हैं तो उसको हम काम नहीं लगा सकते हैं, उनको पढ़ाना ही है 14 साल तक तो। हाँ, फिर अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, किसी भी अगर वो लोग दुकान चला रहा है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, वो उसका मम्मी पापा बिजनेसमैन है, तो वहाँ पर वो थोड़ा उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी स्कूल आवर्स में करना मना है, उनके वेकेशन में हो गया फिर अपनी स्कूल छुट्टी होने के बाद आधा घंटा एक घंटा के लिए वो थोड़ा मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लाइट काम, हैवी काम उनको नहीं दे सकते हैं। और जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं जो मतलब 19 ईयर्स ना, जो 14 to 19 होते हैं, उनको हम हल्का हल्का अपने जो घर का दुकान हो गया जिसे मैंने आपको बताया ना, उन सब चीजों में वो मदद कर सकते हैं, बाकी 14 से नीचे 6 वर्ष तक हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का

0: काम में जो चाइल्ड लेबर जैसे दिखता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट में मतलब किस किस एरिया में हम काम नहीं करा सकते वो लिस्ट भी दिया गया है। अच्छा। जैसे आपका फैक्ट्री वर्क हो गया ना, तो फैक्ट्रीज वगैरह में बच्चों को हम काम में नहीं लगा सकते हैं।
1: जैसे कि हमने कार्यक्रम में पहले चर्चा किए थे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड ही कहते हैं, तो मैंने अक्सर ऐसे लोगों को कई बार देखा है कि घर के बड़े या फिर कोई रिश्तेदार किसी भी छोटे बच्चे को शराब की दुकान में शराब खरीदने के लिए भेज देते हैं, या फिर किसी भी दुकान में तंबाकू से बने चीजों को खरीदने के लिए भेज देते हैं। तो उस समय क्या है ना, वो बच्चे के जो बहुत ही नाजुक समय होते हैं जीवन के, तो ये कहाँ तक सही है इस तरह के काम बच्चों को लगाना, और आप उनको क्या कहना चाहेंगे आप एक एडवोकेट होने के नाते?
0: जी, ये फिर आपका अलग कानून है जिसको हम कोटा एक्ट कहते हैं।
1: अच्छा।
0: देखिए, जब एक बच्चे को तंबाकू या फिर शराब कोई खरीदने बेचता है तो ऑब्वियसली बच्चा खुद का तो नहीं होगा, उनके खुद का कोई बड़ा ही उनको खरीदने बेचता है। तो इससे क्या होता है, ये तो मतलब कानूनी अपराध है। उसके ऊपर में अगर हम बच्चों को अगर ऐसे कुछ चीज खरीदने बेचते हैं तो उनको अगर इस चीज का ज्ञान नहीं होने से भी ज्ञान आ जाता है, मतलब इसे सीक्रेट कहते हैं या फिर इसे दारू कहते हैं, वो ये जानने का मन हो जाता है, फिर वो ट्राई करते हैं। ऐसे करके बच्चों को भी मतलब बहुत खराब असर पड़ता है,
1: गलत रास्ते पे चले जाते हैं,
0: गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो इसलिए जो घर के बड़े हैं वो खुद के लिए नहीं सोच के बच्चों के लिए सोच के एटलीस्ट बच्चों को ये सब चीज खरीदने नहीं बेचना चाहिए, और कानूनी अपराध भी है ये। और जो बेचता है दुकानदार, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई छोटा बच्चा कोई तंबाकू या फिर कोई शराब खरीदते आता है तो उनको वो नहीं बेचना चाहिए।
1: जी जी जी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं। तो आज आपने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने कीमती समय निकाल कर आए और हमें कई सारे महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए अधिनियमों के बारे में जानकारी दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सोनम जामू से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो चलिए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम गीत मंजरी को। लीजिए कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला नगमा प्रस्तुत है रॉकस्टार फिल्म से मोहित चौहान, जावेद अली और एआर रहमान के आवाजों में। गीत के बोल है इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का दूसरा अंक में प्रस्तुत है बरेली की बर्फी फिल्म से आरको के आवाज में। इस गीत को शब्दबद्ध एवं संगीतबद्ध किया है स्वयं गायक आरको ने।

श्रोताओं, अगला नगमा हमने चुना है अरिजीत सिंह और अजीज कौर की आवाजों में केदारनाथ फिल्म से, जिसके रचयिता है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

आकाशवाणी तवंग से प्रसारित कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत श्रोतों इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। और इसी क्रम में अभी आपने सुना दे दे प्यार दे फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में एक गीत, जिसे रचा है कुणाल वर्मा ने और संगीत से संवारा है अमाल मलिक ने। तो आइए इस संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आशिकी 2 फिल्म से पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाजों में एक गीत। गीत के बोल है इर्शाद कानूल के और संगीत जीत गांगुली का।

श्रोता अभी आपने आनंद लिया एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिजोजा और सुजैन डिमेलो के आवाजों में एक गीत का, जिसके गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान। लीजिए कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम नगमा सुनिए, राजनीति फिल्म से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा के आवाजों में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने और संगीत से संवारा है एआर रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया जिंदा आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से ख्याल का राग है ठुमरी खमज। तबले पर उन्हें संगत दे रहे हैं चतुरलाल तथा सारंगी पर सबरी खान।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से ख्याल का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम रागरंग समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंदी पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने असम सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आबकारी, सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा एवं दोनों राज्यों के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अरुणाचल प्रदेश स्थित नुपको के पावर हाइड्रो पावर स्टेशन दोईमुख द्वारा आज एक जन सूचना जारी कर निवासियों को सभी संबंधित लोगों से कहा है कि आने वाले मानसून के दौरान पारे रिजर्वेयर्स में अतिरिक्त पानी को कंट्रोल करके छोड़ा जा सकता है। राज्य के 6 स्काउट मास्टर्स ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हिमालयन वुड वेज कोर्स पूरा किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात ग्रुप ए में मैच गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व भी करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेरिस आगमन से पहले यहाँ रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से फ्रांस में रह रहे रमेश भावसार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत में हुए बदलावों को देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्रांस के लोगों के बीच भी उनके प्रति सकारात्मक सोच देखने को मिलती है। भावसार जी ने आकाशवाणी से कहा,
2: यहाँ पे 15 साल से ऊपर हो गए और मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर 2014 से जो उन्होंने कारोबार संभाला है, और भारत में मैं अभी हाल ही में गया था तो भारत में देखा कि कितने सारे बदलाव आए और देख के बहुत खुशी मिलती है।
1: रमेश भावसार के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय से जुड़ाव मजबूत किया है, जिससे प्रवासी भारतीय स्वयं को भारत के और अधिक

0: महसूस करते हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने असम सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आबकारी, सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा और दोनों राज्यों के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी तालमेल बढ़ाने, बेहतरीन तौर तरीके साझा करने, कानून लागू करने के सिस्टम को मजबूत करने, गैर कानूनी व्यापार को रोकने, राजस्व प्रशासन को बेहतर करने और संयुक्त पहलों में समय समय पर समीक्षा के जरिए भविष्य में सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य होने के नाते साझा हितों और जिम्मेदारियों से जुड़े होने के कारण नई चुनौतियों का सामना करने और गुड गवर्नेंस सुनिश्चित और लगातार बैठक पर जोर दिया है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट निपको के पारे हाइड्रो पावर स्टेशन दोमुख द्वारा एक जन सूचना जारी कर निवासियों और सभी संबंधित लोगों से कहा गया है कि आने वाले मॉनसून के दौरान पारे रिजर्वेयर से अतिरिक्त पानी को कंट्रोल करके छोड़ा जा सकता है। हाइड्रो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन के डिप्टी जनरल मैनेजर इंजीनियर तबा गांगुंग ने कहा है कि पारे नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से रिजर्वेयर में पानी का लेवल बढ़ सकता है। उन्होंने पंचायत सदस्यों और स्थानीय निवासियों समेत सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस एडवाइजरी को पारे डैम रिजर्वेयर एरिया और उनके आसपास रहने वाले ग्रामीणों, पारे नदी के निचले किनारे और पावर हाउस के आसपास रहने वाले लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाए। आदेश में लोगों से यह भी कहा गया है कि वे मानसून के दौरान रिजर्वेयर के पास नदी किनारे जाने से परहेज करें। अरुणाचल प्रदेश के 6 स्काउट्स मास्टर काराम गाओ, येगियन दोन, जुमदो आंगू, ताइंग मुबांग, राजे मारा, संजय चिंते ने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हिमालयन वुडवेज कोर्स पूरा कर लिया है। हिमालयन वुडवेज स्काउट मास्टर के लिए सबसे बड़ी योग्यता और उन स्कूलों में स्काउट यूनिट्स का प्रभावी ढंग से नेतृत्व और प्रबंधन करने के लिए तैयार करता है। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौते में तत्कालीन संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार करने किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करेगी।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से
1: अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लुबेतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,009 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना के प्रगति का आंकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

युवा कार्यक्रम खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करने की दिशा में अग्रसर बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति की शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति

एम्स भुवनेश्वर सी गोटीजुया थ्रेटन धोका हेल्थ कैम्पटी चोदुका यमजु लोनाइ किम्बुर सिंजिन बेनां सने हत पात्रा का मात्र शक्ति भवन मिक्सिक सर्किट हाउस ती निंग रायरंगपुर पुलिस चौटी के गुंजन किम्बुर नदे हिमाचल प्रदेश कक चौटी चंबा का डाउनअप रोड एक्सीडेंट किन ठेसुदी का मिनिस सोमनु चौक निशुलनी उज एक्सीडेंट का मी शिशिरावन बा योजो युथिक नंबर एजे पुन सुम्बिक निंग फोम नेमिथी नोक निशुलनी उज एक्सीडेंट जो चुरा असेंबली सकुंग सने मनी जीरो रेखक पुखरी मशरूम गरी रंगनामा बोलेरो गरीती गरी कंट्रोल मरसु थीन मेटिविया ब्रॉक मोर देरिया मीटर चालियांगलू ले लक्षो मुर देरुक निसुलनी हॉकी चमदन दुर्गा देश न्यूजीलैंड केखप का FIH Women's Nation Cup Dendur Nanuka Gyagarsi Uruguay Shal Shorvatya Utle Dendur Tiangsum Mutuya Deya Pul Ekak Ang Tampka Ombur Langina Utdepka Deshik Nisul Kachensho Shuzubanotus Langina Da Ujujuji Dundrek Lerim Dendrik Samjit Kozudur देश उत्लेनमा नदाचे दोर्जी वांचुसे निरो टेंग्रिक समा सन्नांसा

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। इसके तहत सबसे पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त रोजगार संबंधी विज्ञापन अनुसार सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि ICDS परियोजना के अंतर्गत बाल कल्याण समिति यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC तवांग के लिए एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य पदों हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी तथा पात्रता की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं। अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, बच्चों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। अभ्यर्थी के पास बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, समाज कार्य, समाजशास्त्र, मानव विकास विधि, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेष शिक्षा अथवा अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रति बैठक ₹2000 मानदेय प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेजों को CDPO से DCPO कार्यालय में 10 जुलाई 2026 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 4 का के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र 49 के अनुसार एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदनों एवं दस्तावेजों की जांच के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया की सूचना अलग से दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए CDPO से DCPO कार्यालय तवांग से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदुन लेरम के तहत सुनिए लामा छोपक छोकुर का शेष भाग तथा लामा मेतोटाशी और साथियों से थुपतेन रिमे ग्यापे मुनलम, लोसम गेतनमा, छिमे योंदन और रंगोवा मुनलम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता के तहत सुनिए मन्युल विद्या निकेतन तावंग के दूसरी कक्षा के छात्रा कुंचो छोमू दुमगे से हिंदी भाषा की एक कविता। साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक आज शाम 7:11 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे गायक कुमार सानू संग अन्य कलाकारों के आवाजों में कर्ज, दामिनी, फिर तेरी कहानी, याद आए, एक लड़का एक लड़की, बरसात और आशिकी फिल्मों से चंद नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर, तत्पश्चात

रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए। शाबाश मिठू फिल्म से कैलाश खेर, रुचिका और अमित त्रिवेदी के आवाजों में एक देशभक्ति गीत का। आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन आज रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 19 जून 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ। तत्पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना, विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत कल दोपहर 3 बजे। 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत कल दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी, शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 4:45 पर। तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे दैनिक मनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम। दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री थुपतिनताशी से कल शाम 5:30 पर। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम कुंसल। लेरिम सेडा कल शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदन लेरिम के तहत सुनिए क्यागोंग अनी गुंपा के अनी केसंग और साथियों से लामा छोपा। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7 बजे तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता। साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण कल शाम 7:11 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 पर तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने कल शाम 7:55 पर। कल रात्रि 8 बजे आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन कल रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, तो आपने सुना एक जरूरी सूचना तथा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं सूचना एवं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरोखा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम शेदुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

的最高当小一千浪费藏别地地祖君教祖大爷浪费藏南你进步了我妈我也地给别老师别心急

0: 이제
1: Yamaho, Abdoso, Yamaho,

Ama

Tamejiru singze jimbule, tarde shuta gevara jingela.

Jambarajingelo,

Yo

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड अवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल ओपन अप मेनी पाथवेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा।

0: बजकर 10 मिनट हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की कविता। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए मनोल विद्या निकेतन तावंग के दूसरी कक्षा की छात्रा कुंचो छोमो दुमगे से एक हिंदी भाषा की कविता। कविता का शीर्षक है मां।
1: नमस्ते, मेरा नाम कुंचो छोमो दुमगे है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है मनोल विद्या निकेतन तावंग। आज मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है माँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिसरी जैसे सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जो तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना मनोल विद्या निकेतन तावंग के दूसरी कक्षा के छात्रा कुंचो छोमो दुमगे से हिंदी भाषा की एक कविता। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:11 हुए हैं। लीजिए पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए गायक कुमार सानू और अन्य कलाकारों के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमों का। तो लीजिए कार्यक्रम एक और अनेक में कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में पहला नगमा प्रस्तुत है कर्ज फिल्म से, जिसे शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीतबद्ध संजीव देशान ने।

श्रोताओं कार्यक्रम का दूसरा नगमा प्रस्तुत है दामिनी फिल्म से, जिसे रचा है समीर ने और संगीत से सवारा है नदीम सैफी ने, माफ कीजिएगा नदीम श्रवण ने। इस गीत को कुमार सानू संग गा रहे हैं अलका याग्निक।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा लीजिए प्रस्तुत है फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाजों में। गीत को शब्दबद्ध किया है समीर काजमी ने और संगीतबद्ध अनु मलिक ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं गायक कुमार सानू और अन्य कलाकारों के आवाजों में चंद हिंदी फिल्में मगनू का, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम एक और अनेक जारी है कुमार सानू और अन्य कलाकारों के आवाजों में। तो इसी क्रम में आइए अब आनंद लेते हैं एक लड़का एक लड़की फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम के आवाजों में एक गीत का। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आनंद मलिंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए, बरसात फिल्म से कुमार सानू और अलकाई अहमद के आवाजों में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीतबद्ध नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया गायक कुमार सानू और अन्य कलाकारों के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमों का। इसी के साथ ही हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में सेंट कोविन के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेनोइट बाजिन के से मुलाकात की। इस दौरान सामग्री एवं निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई, जिसमें विशेष रूप से सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सेंट कोविन की भारत में मजबूत उपस्थिति और निवेश भारतीय युवाओं के लिए अवसरों का सृजन कर रहे हैं। वहीं बेनोइट बाजिन ने भारत में कंपनी के आगे के निवेश और विस्तार की योजना की जानकारी प्रदान की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के साथ सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों को सतर्क रहने तथा पुनर्परीक्षा के निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री प्रधान ने कहा है कि मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में तैनात किया जाएगा, जो परीक्षा संबंधी गतिविधियों का समन्वय करेंगे और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक के नेतृत्व वाले केंद्रीय कमांड सेंटर को रिपोर्ट करेंगे। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अभ्यर्थियों को तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा देने के लिए उचित बैठक की व्यवस्था, पेयजल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों, लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं, शिकायत निवारण तंत्र तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की भी समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पारनायक से मुलाकात की और आयोग के वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर आयोग के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने राज्यपाल को वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियों, आयोजित परीक्षाओं, भर्ती संबंधी रिकमेंडेशन, प्रमुख अवलोकनों तथा उनसे जुड़े वित्त प्रभाव की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा है कि APPSC राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए उसे ईमानदारी, पेशेवर दक्षता और उत्कृष्टता के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आयोग को केवल सर्वाधिक योग्य उम्मीदवारों की सार्वजनिक सेवा के लिए रिकमेंडेड कर अपनी विश्वसनीयता, प्रभावशालिता और जन विश्वास को और मजबूत बनाना चाहिए। पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन के महत्व पर बल देते हुए राज्यपाल ने आयोग को परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन पूर्ण निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ करने की सलाह भी दी। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज राज्य के पर्यावरण एवं वन मंत्री वंकी लोवांग, शहरी विकास एवं भूमि प्रबंधन मंत्री पालो राजा तथा मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता के साथ वन क्षेत्र संबंधी मुद्दों और भूमि प्रबंधन से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में व्यवहारिक समाधान तलाशने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने तथा संरक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताओं के बीच संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री PD सोना ने आज ये जानकारी साझा करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार और विवेकानंद केंद्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट के बीच तथा स्थित वर्तमान गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को विवेकानंद केंद्र विद्यालय VKV के रूप में स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रस्तावित VKV एक सह शिक्षा दिवस एवं आवासीय विद्यालय होगा, जो क्षेत्र के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास की नई संभावनाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि यह समझौता शिलांग जिले में शिक्षा की पहुंच को सुदृढ़ करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों तवांग, कुरुंगकुमी, शियोमी, दिवांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार ने कहा है कि देश की सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर कार्य कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, साथ ही पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। और फीफा विश्व कप में आज रात ग्रुप ए के मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में चेकिया का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। चेकिया साउथ कोरिया के खिलाफ 2-1 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगा, जबकि साउथ अफ्रीका भी टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में मेजबान मेक्सिको से 2-0 की हार के बाद अपने पहले अंक हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। इसके बाद ग्रुप बी के मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्विट्जरलैंड का सामना बोस्निया और

आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित दबिया आप सुन रहे थे रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम देशभक्ति गीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए शाबाश मिठू फिल्म से कैलाश खेर, रुचिका और अमित त्रिवेदी के आवाजों में एक देशभक्ति गीत का। गीतकार है स्वानंद किरकिरे और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

श्रोताओं शाबाश मिट्ठू फिल्म के इस नगमे के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर। समय रात्रि के 8 बजे हैं। तो लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो चलिए कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत को शुरू करते हैं आज के पहले फरमाइश के साथ जो किया है सोनबिल कुदाली आसाम के हितेंद्र दास ने। यह फरमाइश है दिल का क्या कसूर फिल्म से साधना सरगम के आवाज में। गीत के बोल है अनवर सागर के और संगीत नदीम सैफी का।

श्रोताओं, आशा रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन फ्रॉम मेहर नगर उमरखेत के अभिजीत गवंकर, मिसेस सरिता गवंकर, प्रणीता सिद्धांत गवंकर और अर्जुन गवंकर तथा आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के वैशाली शैलेश गवंकर, स्वीट गवंकर, मिस धोनी गवंकर और प्रिंस एकांश गवंकर के फरमाइश पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का दूसरा नगमा लूटमार फिल्म से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, रचा है अमित खन्ना ने और संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अगला फरमाइश हमने प्राप्त किया है वादिन खेला पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा से, जो कि है लीडर फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है शकील बदयानी ने और संगीत से संवारा है नौशिद ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के तहत। आप श्रोताओं द्वारा फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला नगमा, दोस्ताना फिल्म से किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के आवाजों में। इस गीत की फरमाइश किया है पजोनिया जला उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और आलौकिक चांसोलिया ने। इस गीत को रचा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के तहत हमने आज आखिरी फरमाइश प्राप्त किया है उर्गिलिंग विकास मगर तवंग के लिपसंग तिंदा जी से, जो कि है मेरे सनम फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वजह फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिए रात्रि के 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट और हर मैदान की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक आज के मुख्य समाचारों के साथ। भारत ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजब बढ़त बनाई। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया। मीनाक्षी हुड्डा, स्नेह प्राची और निखिल विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम से, जो कि इंग्लैंड और लीड्स में चल रहा है। भारत ने आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स पर 95 रन की विशाल जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत कौर की विमेन इन ब्लू ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है।
1: Sprinting forward, what a spectacular catch from Jemmy Rodrigues to wrap up the affairs this afternoon. 50 over champions march ahead in their T20 campaign with another clinical showing.
2: Harmanpreet Kaur की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। पहले मैच में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए लीड्स के हिडिंगले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। यह महिला T20 विश्व कप में रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी जीत है। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी। दोनों खिलाड़ियों ने 115 रन की साझेदारी की। शेफाली 38 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुई, जबकि स्मृति ने पहले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए 47 गेंदों में 74 रन बनाए। मैच के बाद उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि वह शेफाली के साथ बल्लेबाजी को काफी एंजॉय कर रही हैं।
3: We enjoy batting with each other quite a lot. With Shifu, you have to be on toes with her. You have to keep telling her that don't complicate anything, just watch the ball. With the talents of what Richa and Shefali, they feel like trying to hit every ball for a six, which is very fair.
2: इसके बाद अंत में दीप्ति शर्मा ने 2 गेंदों में 10 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। टीम के साथ खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। पूरी टीम 17.5 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। कप्तान बेबेट डी लीडे ने सर्वाधिक 28 और हीतर सीगर्स ने 21 रन जोड़े। भारत के लिए श्रीचरणी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा ने 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट अपने नाम किए। मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा, सुनते हैं।
3: आई थिंक वी वर रियली गुड विद द बैट। इट वाजंट दैट इजी विकेट, बट आई थिंक द वे स्मृति एंड शेफाली बैटेड, दे यू नो गिव अस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम द वे दे बोथ बैटेड टुडे।
2: अब भारतीय टीम का अगला ग्रुप मुकाबला 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से खेला जाना है, जहां भारतीय टीम की नजर जीत दर्ज करते हुए अपनी सेमीफाइनल की राह आसान करने पर होगी। स्पोर्ट्स कैन प्राची वाजपेयी।
0: और अब विमेंस टीम के बाद बात की जाए शुभमन गिल एंड ब्रिगेड की। भारत ने कल अफगानिस्तान को 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में 170 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाकर ये सीरीज अपने नाम कर ली है। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
4: बाय द बॉलर्स शुभमन गिल 900 इन ओडीआई क्रिकेट बीन फिनोमिनल विद द बैट। ईशान किशन हिज सेकंड 100 इन ओडीआई क्रिकेट।
5: धर्मशाला में पहला एक दिवसीय जीतने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू ने लखनऊ में भी अफगानिस्तान पर एक शानदार जीत दर्ज की। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल का दिन कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के नाम रहा। भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने कल अपने बल्ले से न सिर्फ मैच में बल्कि सीरीज में भी भारत की जीत पक्की कर दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्द ही गिर जाने के बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मजबूत स्थिति में लाने में मदद की। हिटमैन रोहित शर्मा कल अपने रंग में नजर आए और उन्होंने 39 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मेहमान टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इन दोनों खिलाड़ियों ने शतक पूरा करते हुए 224 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को 320 के स्कोर तक पहुंचा दिया। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने अपने एक दिवसीय करियर का 9वां शतक पूरा किया। कप्तान गिल ने 110 गेंदों पर 2 छक्के और 22 चौकों की मदद से 154 रन बनाए। दूसरे छोर पर ईशान किशन ने 79 गेंदों पर 7 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 125 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि इसके बाद आए भारतीय खिलाड़ी कुछ बहुत खास नहीं कर सके और टीम ने इस मजबूत शुरुआत की बदौलत 402 रन बनाए। ये 8वां मौका था जब भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार किया। भारत अब दक्षिण अफ्रीका के बराबर पहुंच गया है, जिसने सर्वाधिक 8 बार 400 रन का आंकड़ा पार किया है। इस विशाल लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम फिर एक बार भारत

0: भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई और 45वें ओवर में 232 रन पर ही सिमट गई। मेहमान टीम के लिए रहमत शाह ने सर्वाधिक 79 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। अपना पहला मैच खेल रहे प्रिंस यादव के हाथों 2 सफलता लगी। अपना डेब्यू करने पर प्रिंस ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।
1: जब भी कोई क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो वो ड्रीम यही करता है कि इंडिया के लिए खेलूंगा, इंडिया की जर्सी पहनूंगा। डेब्यू किसी भी प्लेयर के लिए अच्छी बात है, बट ये है कि मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूं, अपनी टीम को जिताऊं।
0: शानदार शतकीय पारी के लिए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात हॉकी के मैदान की, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने देश का झंडा बुलंद किया है। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने हॉकी महिला नेशंस कप में अपने आखिरी पूल मैच में उरुग्वे पर 3-2 की जीत दर्ज की।
3: सबसे पहले बात FIH हॉकी प्रो लीग 2025-26 की, जहां भारतीय पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। भारत के मनदीप सिंह मैच के साथ में शिलानंद लाकड़ा ने 13वें और नीलकांत शर्मा ने 35वें मिनट में गोल दागा। इस मुकाबले में भारतीय टीम का डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आया। मिडफील्डर हार्दिक सिंह को मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने शुरुआत से ही जर्मनी पर दबाव बनाए रखा। इसका फायदा 7वें मिनट में मिला, जब मनदीप ने गोल के सामने एक तेज टर्न से गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद लाकड़ा ने 13वें मिनट में एक शानदार स्ट्राइक से स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में 35वें मिनट में नीलकांत शर्मा ने गेंद को गोल में डालकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। जर्मनी के राफेल हार्टकोफ ने 45वें मिनट में गोल करके स्कोर 3-1 कर दिया। आखिरी क्वार्टर में जर्मनी ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया और मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच के साथ ही मनप्रीत सिंह भारत की से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दिलीप तिर्की के 412 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ा। 413 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मनप्रीत अब पुरुषों की ऑल टाइम इंटरनेशनल कैप में 5वें स्थान पर है। दूसरी तरफ भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए आखिरी पूल मैच में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। शुरुआत में एक गोल खाने के बाद भारत ने जोश और संयम दिखाते हुए वापसी की। दीपिका ने 24वें और 56वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि दीपिका सोरेंग ने गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने लगातार 3 जीत हासिल करके पूल ए में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया। ये मैच मिडफील्डर नेहा के लिए भी खास मौका था, जिन्होंने अपना 200वां सीनियर इंटरनेशनल मैच खेला। भारत अब पूरे आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेगा और FIH नेशंस कप का खिताब जीतने तथा FIH प्रो लीग में वापसी करने की अपनी कोशिश जारी रखेगा। 20 जून को होने वाले सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चिली या कोरिया से होने की संभावना है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात फीफा की, जहां फीफा फुटबॉल विश्वकप 2026 में कोलंबिया ने आज उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया, जबकि घाना ने पनामा को 1-0 से और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 से जीत दर्ज की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण कोरिया से होगा।
4: कोलंबिया ने फीफा विश्व कप में अपनी वापसी का जश्न मैक्सिको सिटी स्टेडियम में डेब्यू कर रहे उज्बेकिस्तान पर 3-1 की रोमांचक जीत के साथ मनाया। मैच की शुरुआत में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। 32वें मिनट में लुइस डियाज के शानदार मूव को डेनियल मोनोज ने बेहतरीन गोल में बदलकर कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ के अंत तक कोलंबिया का दबदबा बना रहा, वहीं दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान ने जोरदार वापसी की। अब्बोस बेग फैजुल्ला एव ने हेडर लगाकर शानदार गोल दागा। इस गोल के साथ ही स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। कोलंबिया ने तुरंत पलटवार किया। स्टार खिलाड़ी लुइस डियाज ने नीचे की तरफ बेहतरीन शॉट लगाते हुए कोलंबिया को 2-1 से शानदार बढ़त दिला दी। मैच के अंतिम मिनटों में कैंपाज ने शानदार हेडर के जरिए तीसरा गोल कर कोलंबिया की जीत पक्की कर दी। एक अन्य मुकाबले में ग्रुप एल में घाना ने कालेब येरंगी के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की बदौलत पनामा को 1-0 से पराजित किया। दोनों टीमों ने गोल के कई प्रयास किए, लेकिन वे नाकाम साबित हुए। मैच के अंतिम क्षणों में कालेब येरंगी ने अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल करते हुए घाना को 1-0 से जीत दिलाई। वहीं तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप 2026 का जीत के साथ आगाज किया। डलास स्टेडियम में हुए ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दी। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, तो 12वें मिनट में ब्रिटेन को मिली पेनल्टी को हैरी केन ने गोल में तब्दील कर टीम की 1-0 की बढ़त पक्की की। इसके बाद क्रोएशिया ने मार्टिन बटुरिना के शानदार गोल की बदौलत वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। ब्रिटेन ने एक बार फिर पलटवार किया और कॉर्नर किक पर हैरी केन ने बेहतरीन हेडर लगाकर अपना दूसरा गोल किया और

0: को 2-1 से आगे कर दिया। पहला हाफ खत्म होने से पहले मूसा ने गेंद को गोल पोस्ट में डालकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में ब्रिटेन अलग ही अंदाज में मैदान पर उतरा और खेल शुरू होने के केवल 2 मिनट के अंदर जूड बेलिंगहैम ने शानदार व्यक्तिगत प्रयास करते हुए गोल दागा। इसके बाद मैच के अंतिम पलों में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने गोल करते हुए स्कोर 4-2 किया और ब्रिटेन की जीत पर मोहर लगा दी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब रुख करते हैं चीन का, जहां पर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है। मीनाक्षी हुड्डा ने आज इस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की नतालिया कुचेस्क्वा को 5-0 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में कल 4 भारतीय खिलाड़ी अपना मुकाबला खेलेंगे, जिसमें 51 किलो में मीनाक्षी, 65 किलोग्राम वर्ग में स्नेह, 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची रिंग में उतरेंगी। वहीं पुरुषों में निखिल 55 किलोग्राम वर्ग में चुनौती रखते नजर आएंगे। वहीं मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चाहिला महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब बात स्टार जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जो कि एक लंबे इंतजार के बाद कल से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग 2026 में मैदान पर नजर आएंगे। ये नीरज का इस एथलेटिक सत्र में पहला मुकाबला है।
2: Okay, so this is my first competition for the season. So I will try my best. I feel really good. I feel fit and let's see tomorrow. I'm waiting for tomorrow.
3: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कल रात डायमंड लीग के दोहा में मैदान पर उतरेंगे। इस स्टार खिलाड़ी ने 2023 में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के साथ खिताब अपने नाम किया था। 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था और पिछले वर्ष नीरज ने इसी मैदान पर 90 मीटर का आंकड़ा पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उन्हें 90.23 की दूरी प्राप्त करने के बाद भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा बीते कुछ समय से स्विट्जरलैंड में ऑफ सीजन प्रशिक्षण शिविर में पीठ की चोट से उबर रहे थे। भारत का यह स्टार भाला फेंक खिलाड़ी आखिरी बार पिछले वर्ष सितंबर में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मैदान पर उतरा था। ऐसे में लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए मैदान पर कड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक श्रीलंका के रोमेश पथिरागे इस लीग के लिए तैयार हैं। पथिरागे ने इस महीने की शुरुआत में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा विश्व चैंपियन केशॉर्न वॉलकॉट, ग्रेनाडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और केनिया के जूलियस योगो भी शामिल हैं। ऐसे में कल सभी को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो सबको उम्मीद होगी कि कल दोहा में एक शानदार मुकाबला भारतीयों का इंतजार कर रहा हो। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की आज पुण्यतिथि है। देश विदेश के लोग इस महान धावक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में 18 जून 2021 को निधन हो गया था। फ्लाइंग मिल्खा सिंह को भारत में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जाना जाता है। मिल्खा सिंह ने भारत का 3 ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया था और खासकर याद किया जाता है 1960 में 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ी गई उस दौड़ को, जहां 1 सेकंड से भी कम अंतर में ये खिलाड़ी भारत के लिए पदक लाने से चूक गया था, लेकिन भारत के लिए कई कीर्तिमान अर्जित किए इस खिलाड़ी ने। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें sportscan@air.gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को

0: में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट गोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने

0: रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: विधि सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया कर क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
1: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
2: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries.

0: as a justified response to Russia's ongoing military actions. In sports news, India's Meenakshi Hooda advanced to the quarterfinals of the World Boxing Cup 2026 in Guiyang, China today. Meenakshi secured a convincing 5-0 victory over Poland's Natalia Kuczewska in the women's 51kg round of 16 bout. Four Indian boxers will be in quarterfinal tomorrow. In the women's 51kg category, Meenakshi will face Kazakhstan Alua Balkibekova, while Sani will take on Poland's Kinga Krowaka in the women's 65kg division. Prachi is set to meet Chinese Taipei's Chengyu Yang in the women's 57kg quarterfinals. In the men's competition, Nikhil will face Azerbaijan's Amin Mamadzada in the 55kg category. In hockey, India defeated Uruguay 3-2 in their third Pool A match of FIH Women's Nations Cup in New Zealand today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: Akashwani Delhi se anuprasarit abhi aap sun rahe the news at 9. आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों से। श्रोताओं, कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आधुनिक हिंदी फिल्मी लग्नों का कार्यक्रम गीत मंत्री कल दोपहर 3:50 पर। साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम कुंसल कल शाम 5:35 पर। शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण तथा आपकी वाचक फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8 बजे। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे मिडडे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगीत सुनो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमांतो स्वर्गरी और श्री तानिता को, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मुझे यानी हिंदी उद्घोषिका गेंदन हामू को दीजिए इजाजत। समय